0: 你看你可亲哦，你那么细心，你那内心。
1: नवाचो पढ़ गए नम्मली सुन हो निमता चादी होइना ए पुराई माया देव मलाई आदि होइना ए पुराई माया देव मलाई आदि होइना वानेर फिरी नवाचा नहीं पालो पड़े था

0: गरौँ म मात्रै
1: मायालाई के देऊ म बैना फुल देऊ कि फुल बुटे रुमाल
0: ल हजुर।

0: पर निघर गुरु मधनी मांगू बटुकी मई रखी गुट गुट पीऊ गुट गुट पीऊ वो बात करे
1: ओ काली ओराली धायो माया पायो अब तक के चाहियो ला यो बात है
0: यो बात

के महिमा भनेर अब चाहिँ म एकचोटि पालो गाउँछु अनि तपाईँले एकचोटि गाउने अनि हामी छुटिनु पर्छ है।

0: खेतमा पेट भरिने बोनस चाउचाउ।
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9856202779।
2: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन के आवाज।

0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज
1: स्टुडियो टाइम
2: अहिले दिउँसोको 1 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: XY3.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो टाइटेन अहिले बिहानको 5 बज्यो टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301